तो सुखितो होतो परमेन्द्र महाराजा स परमराजिनी सिद्धि किचं सिद्धि कमं सिद्धि लाभो चयो निचं परमेन्द्र महाराज वरता परमराजिनिया सह भवतु सप्पथा ขอถวายพระพร